0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बास सम्झोट आम्भिन्द लक्ती र हटबरा पानी बस्तबेर अस्तिम कहाँ र सिक्जाए त सोचो त लट्टी ठिक्कम घर डान्डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हा त धन्न ब्यालम डिक ठिकम से सुरक्षित ठाउँ सरले नारे बट्टी
1: हा हो बडा
2: बर्खक ब्यालमा बह्य ढ्यार जोखिम रहत उह मार बह्या से बचकला पहिले हा सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के सम्पर्क विवरण क सूची बनाई एकचोट प्रयोग के लाग झटपट झोला तयार पारी ओ बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बहा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: नमस्कार, तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन छ सधैं, बाज चाहिँ।

0: Hey, fresher. You, chocolate fresher. All this joya chai stuff. मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा।

0: कशा जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हो. डू यू लाइक मी?
1: एक्चुअली यस.
0: गुड. तो जाए थे टू रियली फील क्यूट.